सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई,

हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन।

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे

तस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना होन जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, केलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह है, सहस पणि जय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कार, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जा सुनते उनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्तु तरी नह जा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक वालिए दो जहां रहमतां दे मुजस्मे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान सतसंगी जनों सतगुरु जी दी अपार कृपा बख्शिश होई है। दातार सतगुरां ने अपनी पावन पवित्र हजूरी विच सानू सारियां नूं विराजमान होण दा समां बख्शिश कीता है। धन सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज अज दा जो पावन उपदेश बख्शिश करदे हन सुखमनी साहिब जी दी अष्टपदी नंबर 10 दे अधीन दर्ज अज दा ये पावन श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 275 पर सुशोभित है। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे उचारण कीती ये पावन बाणी जिस दे विच महाराज जी ने जो उपदेश अज दा साडे सन्मुख बख्शिश कीता है तिस दी विचार आपां करनी है। पातशाह दी कृपा करन पावन गुरमत गुरबाणी गुरशब्द विचार सतगुरु जी आप तरस करके करवा लैण।

चेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूतर तार तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जान नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधिया वै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह बिरद की पैन पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले।

जिता समुंदर सागर नीर प्रिया तेते अवगुण हमारे दया करहु किछ मेहर उपाव डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सोका हो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साह जिस पास बैठियां सोहिया सब नांदा विसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मुको

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हे पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास जा सतगुर दे चरणा में अरदास कीती फिर सतगुर ने अरदास सुनी जेड़ा अरदास सुनता है जेड़ा अपने सिख दी लाज रखता है फिर उदे चरण तोतो के पेड़ नू क्यों ना मन करे कई कहंदे ने अरदास कीती पर अरदास पूरी नहीं हुई पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा महावाक है बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास अरदास कदी बिरथी नहीं जांदी श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शना वास्ते आंदियां हन इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हैं एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई ए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई समा बीतया वसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पवित्र धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत दी दात दित्ती इस बच्ची ने भी अमृत छकिया पहला नाम बसंत लता सी अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई श्री आनंदपुर साहब दे किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब दा किला जिस वक्त छड्या सरसा नदी पार कीती सरसा नदी पार कीता गुरु साहबां दा सारा वही इत्थे आके विछड़ गया तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालिक दे करीब सिख इक पासे तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी इक पासे सारा परिवार और सिख विछड़ गए इस समय जिहड़ी ए बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है कमर कसा कीता है ए भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है ठोकर लगी थले डिग पई सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए समुंद खान ने कहा बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना ना कोई तेरा सिख भरा मेरी बेगम बन जा राज करेंगी पर बसंत कौर ने कहा समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता दा अमृत छकिया मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है बसंत कौर नू कैद कीता गया तसीहे दिते लालच दिते पर बसंत कौर डोली नहीं आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नू कैद कीता गया समुंद खान उस कैद खाने विच आया बसंत कौर नू कहन लगा बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं समुंद खान अगे होया बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नू पकड़न वास्ते पर बसंत कौर थड़े तो एकदम उठ के खलोई गर्ज के कहन लगी ओ दुष्टा परा हो जा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया जद कहा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है उस वक्त बसंत कौर नु प्रत्यक्ष दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया हिलजुल नहीं सी सकदा फिर इसने
बेनती की बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां दे मथा टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया सास। यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करेंगे।

चित चित वो अरदास करो पर कह भी न सको, सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलग कारण पुरख जो फुरमाए सो कहो, गुर अमरदास कारण करन जीव तू रखे तिव रहो, अगम अलख कारण पुरख

कुसम बसंत गणत नावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन पल

0: पंचे सोह है दर्रा जान पंचा काकुर एक त्यान
1: कह करे विचार करते कह करने नाही सुना
0: तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया दिन सूत
1: ऊपर के
0: धरती होर पर होर तिस्ते पार तलै कमन जोर
1: के नाप सपना लिखिया हुई
0: लिखा लिख जाने कोय लिखा लिखिया किता होए किता पसाओ इको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ ज्योत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार संख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रहे उदास संख सूरम पक सार संख मोल लिवलाय तार ज्योत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार संख अमर कर जाहे जोर संख गलवड हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे संख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार संख नाव संख थाव अगम अगम संख लो
1: अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुंगा
0: अखरी लिखन बोलन बाण।

0: कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे
1: नमो
0: जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो
0: सस्त

नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्ण नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे कृपालन स्वरूपे कुक

0: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे
1: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
1: सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाओ
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे
1: सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: सर्वत्र सुखे के सर्वत्र पुखे
0: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
1: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे
0: सर्वत्र मान्य सदैव प्रदान
1: सर्वत्र जापे के सर्वत्र
0: के सर्वत्र पाने

0: सुभाष है,
1: अजब स्वरूप है कि मृतो विभूत है,
0: मृतो पसा है कि आत्म प्रभा है,
1: अचल जनक है कि मृतो अपंग है,
0: अरुवार चंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गन मुदा,
1: अरुवार गन है अरुवार
0: गन अंगन प्रणाम मुन मन सला,
1: अरुवार गन बनर मंड
0: अनपवनास मुन मन प्रकाश,
1: गुण गन प्रणाम जल जल मुदा,
0: अंजिज अंग आसन अपंग
1: उपमय अपंग मित्र,
0: जल दल अमंड दिस विश अपंड
1: जल दल अमंड दिस विश।

0: सुरसुरादन सुरसुदायक संत समूह अनेक मति के
1: सारे ही देश को देख रियो मद को न देखिए प्राणपति के
0: श्री भगवान की पाई कृपा उतै एक रति बिन एक रति के।

0: पतंत को नागे पाए पदारे
1: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजे टोल में गंगन गारे
2: गुंजत गुड़ गुजान के सुंदरी सती है राज जारे
1: उतक पविक भगवान के पूपद कौन गने नहीं जात बेचारे
2: श्री पर श्री भगवान।

0: मन परे मन में कर पर्वत पंख ले नहलेंगे।
1: दूर रीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे।
0: श्री पर श्री भगवान कृपा विंत्याज जहां निदान चलेंगे।
1: वीर पार बड़े बड़े आर विचारे सार की तार पिछैया।
0: दूर देश मलिंद मवासन माते गजान।

0: दानव देव निंदन साजर पूत पुविक पुआन जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे।
0: उन पर दापन बार जाए तुन पापन के वो पुंज खपेंगे।
1: सात समूह पर सन फिरे जो सत्र सवे अवलोक जपेंगे।
0: मानव इंद्र गिरी दंदरात जो अंतर लोक को राज करेंगे।
1: कोटि स्नान गजायक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव अंत फसे जाऊ।

0: निर्भीक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को क्षय करता
1: जब दे दिया ला पूर्ण ग्रह कंतत काला
0: मन वाचन फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई
1: पावे स्ने मोल लचुचता आवे
0: दुख दर्द पौ निकट नाते नर के रहे जो या की एक बार चौपाई को कहे
1: चौपाई संव चित्र सी जय दिन दीन घी जय
0: पादर सुधी अष्टमी रविवार तीर सत्र द्रव गंध सुधारा
1: पाएंगे जब तेत मेरे तब ते कुंग तिरनिया
0: निया राम रहीम कुरान कुरान ने कहे मत एक न माने
1: सास वैसो वेर खे में खम जा

0: आखे तवे के सब तू है जिन जगत उपाया।
1: जय नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया।
0: सुन नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन बसाया।
0: जी जन सब तू दो पाए एक वेख परसन।

0: करके चलना,
1: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाने,
0: चाल पक्ता जुगो जुग निराली,
1: जो तू चलावे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे,
0: जो तू चलाए तिव चले जिना मार्ग पावे,
1: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे,
0: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे,
1: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे,
0: रहो सोएला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोएला सतगुरु सुनाया,
1: एहो तिनके मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया,
0: एक बरे कनेरे करे गला गली किने ना पाया,
1: कहे नानक सबद सोहेला सतगुरु सुनाया,
0: पवित होए से जना जिनी हर ते आया,
1: हर ते आया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया,
0: पवित माता पिता कुटुंब सहित सो पवित संगत सबाईया,
1: कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया,
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर ते आया,
1: गर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा
0: ना जाए, ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए,
1: सहसे जीव मलीन है कित संजम तोता जाए।

0: चंदन हार लिव लागे जागत रहन विहारी।
1: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये,
0: मनो क्यों विसारिये वरदाता जे अगन में हार पहुंचावे।
1: उसनु कह पौ ना सकी जिसनु आपणी लिव लावे,
0: आपणी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये।
1: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये,
0: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
1: माया गन सब एको जेही करते खेल रचाया,
0: जातिस पाणाता जमेया परवार पला पाया।
1: लिव चुरकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया,
0: ए माया जितर विसरे मोह उपजे पौ दूजा लाया।
1: है नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
0: हर आप मूलक है मूल न पाया जाए,
1: मूल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
0: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु से सोपिए विचो आप जाए।
1: जिसना जियो तिस मिल रहे हर वसे मने आए,
0: हर आप मूलक है पाक नाते नानका जिन हर पले पाए। हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा सतगुर ते रास जानी।
2: हर हर नित जपियो जियो लाहा कटियो दिहाड़ी,
0: एह तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा।
2: एह नानक हर रास मेरी मन होआ वंजारा,
0: एह रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए।
2: प्यास न जाए होरत कीते चिचर रस पल्ले न पाए,
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए।
2: यो हर रस करमी पाइए सतगुरु मिले जिसे आए,
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए।
2: हे शरीरा मेरिया हर तुम में ज्योत रखी ता तू जग में आया,
0: हर ज्योत रखी तुद विच ता तू जग

0: मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया
1: हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे
0: गुरु चरण लागे दिन सबागे अपना पिर जापे
1: अनंत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
0: कहे नानक प्रभ आप मिलिया करन

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात न हिन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत त्वै सर्वनाम कथय कवनम

सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों गुरसों चटीए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंदै साह जिस पास बैठिया सोहीए

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस सो कहो तल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पात साहो सिर साहदे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।